नौजवान कहने लगा मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा मर्दा मैं बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा मर्दा बच के आया वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दी, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दी ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਘਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਦੇਖਣਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮ ਲੈ ਕਰ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਨਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਇਨਾ ਲੋਇਸ਼ੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਇਸ਼ੇ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੂਲ ਰਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪੀਛੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਮੂਲੇ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀ ਮੇਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮਨੁਸ਼ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁਸ਼ ਕੇ ਜਾਮੇ ਸੇ ਬਹੁਮੂਲੇ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਜੋ ਆਜ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹਮਕੋ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। ਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ। ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ ਵੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੋਂ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਪਿਤਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਕਿ ਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਤੇ ਹੈਂ ਹਮਨੇ ਪਲਾ ਬਨਨਾ ਹੈ, ਪਲਾ ਪਲਾ ਕਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅੱਛਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਲਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਪਲਾ ਬਨਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਭਲਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ, ਅਛਿਆਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ। ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਮਨੇ ਅੱਛਾ ਬਨਣਾ ਹੈ ਕਹਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਣਾ ਭਲਾ ਬਨੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਤੇ ਨਾ ਰਹੋ।
परोपकारी दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हुए जो परमात्मा से विछड़े हुए हैं उनको हरि की पंक्ति में लगाकर उनका मिलाप करवाते हैं। धर्मी का जीवन ऐसा है जैसे भाई गुरदास जी ने एक और पितर शब्द में कहा, आप सहंदे दुख जग वरसाए, मैंने एक बात सुनी थी, स्कूल के विद्यार्थी अपने उस्ताद को बोले, हमें ये बताओ कि हमें अपने आप को धर्मी कहलाना है कि नहीं। उस्ताद ने बोला, सिर्फ अपने आप को धर्मी कहला कर क्या करोगे, देखना इस बात का जवाब जो है मैं आपको अभ्यास के रूप में दूंगा, प्रैक्टिकल के रूप में दूंगा। हो सकता है जे अगर मैंने बिना अभ्यास के आपको उत्तर दिया शायद आप ना समझ सकें। उन छात्राओं को जब स्कूल में छुट्टी दे दी गई वो अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में क्या देखा, जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते में कंडे बिछे हुए थे, कांटे थे, रास्ता ठीक नहीं था। बोतान छात्रों ने क्या किया, अपना अपना रास्ता बनाकर वो रास्ते में आगे निकल गए, दूसरों को बताते रहे जिस रास्ते से हम निकले उस रास्ते के पीछे आप आ जाना। लेकिन एक छात्र पीछे रह गया। उस छात्र ने बोला, मैं तो अभी नहीं आऊंगा, देखना पहले मैं रास्ते को साफ करूंगा। जो रास्ते में कांटे बिछाए हुए हैं उनको हटाऊंगा, साफ करूंगा। दूसरे छात्र बोले, आप क्या करोगे, पीछे आ जाओ, पीछे रहकर क्या करोगे। वो छात्र बोला, ऐसे नहीं, जो मेरे पीछे आएंगे इस रास्ते पे आने वाले उनके लिए भी मैंने रास्ता बनाना है। देखना मैं तो आप जैसा रास्ता बनाकर चला जाऊंगा, लेकिन जो मेरे पीछे आएंगे उनका क्या होगा। वो छात्र बोले, आपने क्या लेना है, क्या आप सारा रास्ता साफ कर लोगे। वो फिर छात्र बोला, देखो जे मेरे से ये रास्ता साफ नहीं हुआ लेकिन मैं यहां पर ही रुक जाऊंगा, जो दूसरे रास्ते पे आने वाले आएंगे मेरे पीछे उनके साथ उनको लेकर रास्ता बनाऊंगा। उस्ताद बोला, धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं बनता, धर्मी बनने से धर्मी बनता है। देखो ये छात्र अपने लिए ही रास्ता नहीं बनाता, दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है।
धर्मी अपने जीवन के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। धर्मी अपने आप को तो दुख सह लेता है, लेकिन दूसरों को सुख बरसाता है। परोपकारी जो है, दूसरों के भलाई के लिए सदा ही तत्पर रहता है, अपने आप को त्याग में पाकर दूसरों को सुख देकर जीवन की जुगती बताता है। धर्मी कहलाने से कोई धर्मी नहीं, धर्मी बनने से धर्मी है। अपने आप को सिख कहलाने से कोई सिख नहीं, सिख बनने से सिख है। अपने आप को सत्संगी कहलाने से कोई सत्संगी नहीं, सत्संगी बनने से सत्संगी है। अपने आप को साहिब का सेवक कहलाने से कोई सेवक नहीं, सेवक बनने से सेवक है। आज भाई गुरदास जी इसे ही पितर वचन के लिए एक पौड़ी में ऐसे बताते हैं, एक वृक्ष का प्रमाण देकर परोपकारी जनों के लिए एक वृक्ष का प्रमाण देकर हमें ऐसे समझाते हैं। कैसे समझा रहे हैं, आओ रचना पितर करिए। उनका ये पितर शब्द सब साथ में साथ लेकर गुरु की अपार कृपा से गायन करें।

अपने सहे दे नाल, अपने प्रभु दे नाल रते गए पाप जिन्हां ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया, ओ सारयां नूं चंगे लगदे ने। क्यों? जो हर का प्यारा

喂，我是阿宾安娜，小伯，就从你阿爸说你，我的一个房子瓦了点的，我的不加，黑的不就不晒的，他满着的，我非不得给你。हर इंसान परमेश्वर की निगाह विच है, क्योंकि परमेश्वर सारे नाल वसदा है, ओदी निगाह तों कोई दूर नहीं हो सकता।

पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है। और होमे तां आंदी है जद इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा ताकि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

मन ते तोखा तां लहे जां सिफत करे अरदास। कई लोग कहंदे ने जदों भी पाठ करन बैठिए भजन करन वास्ते बैठिए मन नहीं टिकदा। मन किस तरह टिके? जद मन विच विकार ने, मन दी पटकना तां ही खत्म हो सकती है। मन दे परम तां ही दूर हो सकते ने जे असी दिलों अरदास करिए और सच्चे मनो परमेश्वर दी सिफत सलाह करिए। कई कहंदे ने साडी अरदास पूरी नहीं हुई, सुखना सुखी सी पूरी नहीं हुई। जद अरदास करो, दिल दी गहराई विचों अरदास करो और सच्चे मन दे नाल परमेश्वर दी सिफत करो, अरदास भी सुनी जाएगी। मन दा धोखा परम वहम भी दूर होणगे और परमेश्वर दी खुशी भी प्राप्त होवेगी।

सिर तां कटवा दिता, पर उस दा हाथ फड़िया सी जेड़ा, वो मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पहुंच सके। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

धर्म की रक्षा करके विखाई। तो गुरु दसम पातशाह ने धर्म की रक्षा वास्ते, हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता, जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

मुक्त पदार्थ माहे समाया, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, जिम बुलावे तिम बोलह स्वामी, जिम बुलावे तिम बोलह स्वामी, कुदरत कावन हमारी। साध संग नानक जस गायो।

0: देह बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर रहे। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर लै। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतों की बाणी, संतों की बाणी, गुरुआं की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारिया की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र की है। ये सारे संतां भगतां दे सतपुरशां दे वचन हैं, गुरुआं दे वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कछु उपाव मुक्त का कर रहे। कहिंदे कोई अपना उपा कर लै, कोई जतन कर लै। ये जो तैनू वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समा मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लाख जून दे विच, किसी जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी क्या मेहर है, सानू उसने ये अमोलक जन्म दे देता है। बोलो ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने साथ संगत के ये दिमाग जो ये सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, जां फिर ये अमोलक नेत्र अखां दे दित्तियां हन, हथ पैर दे दिते हैं, जवान दे दिती है, कन्ना विच सुन दी शक्ति दे दिती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहेगुरु।
0: इस जीव दे उते अकाल पुरख की कृपा हुई है जो ये मनुखा जन्म दिता है। इस नूं देवते भी तरसदे हन जो साडे उते अकाल पुरख ने यह कृपा की है, मेहर की है। गुरु जी कहिंदे ने राम आइया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। राम आइया के गुण चेत प्राणी, उस परमात्मा ने गुणा नूं कुछ याद कर, अकिरत घाणा मन कुछ याद कर, चेते कर। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। ते क्या तेरी जो जड़ है, कित्थों तू पैदा होया है, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, की दिस रहा है, क्या नजर आ रहा है, तेरा कितना सुंदर शरीर उस वाहिगुरु परमेश्वर ने बनाया है। थोड़ा जा फर्क पै जाए देख लो कितना औखा हो जाता है। डॉक्टरों को भजे फिरदे असीं, हस्पतालों भजे फिरदे, ही अखां च थोड़ा जा फर्क पै जाता, कन्नां च सुन दी, दंदा दी, होर सास संग कितनी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कितना औखा हो जाता है, जिसने सारा शरीर दिता है। राम अय्या के गुण चेत्र प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सिवार सिगारिया। देखो पंजे तत्व उसने किवें इकट्ठे किए हैं, पंजा तत्वों का कितना सुंदर पुतला तैयार किया है, जिस दे विच ए रूप आई है, आत्मा पाई है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहेगुरु।
0: साहिब का फरमाया जिहड़ा जीओ देही विच आए पाया, जो उस दा हुक्म हुंदा है, इस रूह नूं आत्मा नूं इह पंज तत्त दा पुतला, पंज तत्तां दा इह घर, पंज तत्तां दी इह गड्डी, पंज तत्तां दा इह रथ शरीर इह प्राप्त होया है। इह अकाल पुरख दी कृपा है, अकाल पुरख दी मेहर है। कितना दिमाग कम करदा है, किवें कम कर रहा है, इह माता पिता दी कृपा तां नहीं है, ये तो अकाल पुरख की कृपा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहेगुरु।
0: शरीर की रचना तो उसने की थी। सो अकाल पुरख वाहेगुरु की कृपा है जो उसने सानू ये हाथ पैर दे दते हैं, अखां दे दतियां हैं, ये शरीर दे दता है, शरीर दे विच चलन की शक्ति पा दती है, ये रूह नूं ये जड़ा है ये शरीर बख्श दता है। ये अकाल पुरख की कृपा है, ये वाहेगुरु परमेश्वर की कृपा है, इस विच अपनी कोई ताकत नहीं है। ते दूसरी कृपा जीव दी मनुख दी अपने आप ते हुंदी है कि यह प्रभु दा परमेश्वर दा नाम जपे, सत्संगत करे, सेवा करे। बोलो
1: सतनाम श्री वाहेगुरु।
0: अपने आप ते कृपा करे, कुछ मेहनत करे, उद्यम करेंदा जीव तू कमाव दिया सुख पुंच, ध्याय दिया तू प्रभु में नानक उतरी चिंत। यह अपने आप ते कृपा करे, संगत विच जावे, वैसे यह भी कृपा वाहेगुरु परमेश्वर दी है, संगत विच जो सत्संग दी प्राप्ति है। फिर इसने क्या कृपा करनी है, गुरु दे वचना नूं कमाउणा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहेगुरु।
0: अपने आप ते कृपा करनी है। दूसरी कृपा ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀ ਇੱਕ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ।

अकी चढ़ाओ चढ़ंदा। भगत कबीर जी नू सेवका ने पूछया सी, महाराज तुसी स्वर्ग भी निंद दिते ते कह रहे हो भाई पूर्ण गुरु

मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़ मैं तेरा सिवरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भुल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लहां। गुरु की बाणी कह रही है कि ए मनुख तू अमोलक हीरे लाला तो भी महंगे अपने श्वास धंधियां विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी न्याई हन जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे किते कोई होर ना लै जावे किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके लै जाए रात नूं नींद नहीं। सद भावना रखण वाला उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा है अपनी उठदा है पर धनवान बंदे नूं नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया काच बादरे लाल खोई है तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नूं खरीद के अपने आप नूं बड़ा धनवान समझना है बड़ा बलवान समझना है भई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार हुंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन जदों एक धनवान गुजर गया शरीर छड गया ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया ते आख्या भाई ये सोने दी जंजीर किधर लै चलिया उसे वेले तोड़ ली। कबीर जी वेख के हैरान हो गए आख्या कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ चलती बार ना कुछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। की लै गया भाई नाल की जाएगा। हजूर कहिंदे नाल इना जिहड़े अमोलक श्वास तेरे हन इना नाल नाम दे लालां दा वणज करेगा ए लाल तेरे नाल जानगे। धन गुरु नानक पातशाह जदों दुनी चंद दे पास गए हन बड़ा अमीर सी हजूर कहन लगे नाल तां इक सुई भी नहीं जानी ते तू इना धन कट्ठा करी फिरदा। कहने लगा महाराज कृपा करो मैं बड़ी औखी कमाई कीती है ते कोई ऐसी जुगत दसो जिदे नाल मैं नाल लै जावां। हजूर कहन लगे भाई नाल तां लै जा सकना है तू जे साडे आखे लगे महाराज हुक्म करो। कहन लगे जितनी माया कठी कीती है लोड़वंदा नूं वंड दे उहदे नाम ते ते तेरे नाल चली जाएगी। उच्चारण करो श्री। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन ओ मित्रा धन तां तू नाम दा इकट्ठा करना सी ते हुण द्वार द्वार धन लई तू भटकदा फिरदा तैनू सोधी नहीं है कि इना अमोलक श्वासां नाल उस परमेश्वर दा नाम भी जपी दे। इसलिए मित्रा

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओए भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदिया भी देर नहीं लगती, जांदिया भी देर नहीं लगती। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु का धन्यवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जाता है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए, एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिस दा नाम सी, इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां, ए भलिया तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्यवाद करना चाहीदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है वह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होई, बहुता कुछ उत्थे बनाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात माल रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ।

सिद्ध को पायो तिन तिन अपनो राज लायो जिन जिन तनक सिद्ध को पायो तिन तिन अपनो राज चलायो तिन तिन अपनो राज चलायो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचित्र नाटक दे अंदर अपनी पावन गुरबाणी ते अकाल पुरख दे सामने होया होया प्रोमिस गरीब नूं आज सचे पातशाह जी दे सामने कीता होया वचन भई मेरे अकाल पुरख नाल मेरी केड़ी केड़ी गलबात होई ता मैं संसार दे अंदर अवतार तारिया। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह अपने पहले जन्म दी हिस्ट्री दस रहे ने बचित्र नाटक दे अंदर ते आरंभ करदे हन भी जदों संसार दी उत्पत्ति होई किन्ने राजे महाराजे आए किन्ना वंश विचों जन्म लैंदिया होया साडी ए सोटी वंश उत्पन्न होई। गरीब नवाज सचे पातशाह ने कथन

संसार चो राज करदिया होया राम चंद्र लक्ष्मण भरत शत्रु ते भरत ए चारे दे चारे चले गए ते सीता दी कुखों दो राजिया ने जन्म लिया सी सुत बहुर भय दोए राजा राज पाठ उन्हीं को साजा उन्हां दा नाम सी लव ते कुशु।

से बासन तने बर्ख की न तहाई नवासन धने बर्ख की न तहाई नवासन लवी जित गए ते कुशी हार गए कुशी जड़े ने कांशी विच आगे बह गए कुशियां ने कांशी दे विच आके वेद याद कीते वेदां दा पाठ सुन सुन के पढ़ पढ़ के ए फिर कांशी विचों जदों महान पंडित बन गए ना इन्हां दा नाम पै गया बेदी ते लवी बंस वालियां दा नाम पै गया सोढ़ी ए सोढ़ी ते बेदी बेदी वंश चो गुरु नानक देव जी महाराज ने अवतार धारिया ते सोढ़ी वंश विचो साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अवतार धारिया कहंदे भी बेदियां दा ते सोढ़ियां दा मिलाप हो गया बड़े पंडित बन गए महान विद्वान इन्हां ने आके वेद दियां रिचां उपांगां उच्चारण कीतियां इस राज दे अंदर ते लवी बड़ा प्रसन्न होया कहण लगा तू कौन है कहंदा मैं तेरा भरा जिसने मार के भजाया सी तू मार के भजाया सी ना मैं ओ हां कहण लगा मैं तेरे वेदा नूं सुन के बड़ा प्रसन्न होया तू ब्रह्म दी ज्ञानता प्राप्त कर चुका तैनू मैं राज भाग सौंप दिता अज तो ए साडा राज भाग तेरे हवाले कर दिता जिन बेद पठेओ सो बेदी कहायो तैन धर्म का कर्म नीके चलायो ते वेद पढ़न दे नाल ते सुनन दे नाल सारे दा सारा राज भाग महाराज बेदी ने बेदियां नूं दे दिता लवियां ने ते बेदी कहण लगे भी महाराज तुसी वड्डे भराता हो सानू हुण तुसी राज दे दिता ए साडे सिर उपर एक करजा है ते असीं इह राज तुहाडे वापस देना ही देना तुहाडे हवाले तुहाडी अमानत करनी करनी है फिर कदों करिए ते बेदी कहण लगे भाई पहले जन्म ते असीं आवांगे गुरु नानक दा रूप धारण करके साडी वंश विचों उत्पन्न होणगे पहला दूजा तीजा वंश जदों चल पाएगा ना ते चौथे जन्म दे अंदर जदों गुरु होवांगे गुरु रामदास दे नाम दे नाल तेरा प्रकाश होएगा लाहौर शहर दे अंदर तेरा नाम होएगा रामदास चौथे जन्म विच आके तैनू असीं दित्ती होई अमानत वापस कर देंगे तैनू गुरु थापना कर देंगे गुरु थाप के तैनू संसार दे विच दित्ती होई अमानत तेरे हवाले कर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ी वड्डी ये विचित्र नाटक है बड़ी महान रचना समय दे अंदर पूरी नहीं होंदी ये जिहड़ी वार्ता दो ढाई घंटे की लंबी वार्ता है इस करके साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे इथों तक अकाल पुरख महाराज दे चरणां दे विच बिणे होई उन्हां दे सामने ए वाक होया ते अकाल पुरख ने सारी दी सारी वार्ता सुना दित्ती भई हुण तैनू संसार विच अवतार लैणा पैणा ना तू पत्थरां नूं पूजक होएगा कहो प्रभु सुभाख हो मैं महाराज अकाल पुरख नूं कहा की कहा किसू ना कान रख हो किसू ना भेख बीज हो अलेख बीज बीज हो मैं किसे दे भेख विच नहीं भेजांगा पत्थरां दी पूजा नहीं करांगा महाराज तेरे पंथ नूं तेरे वंश नूं संसार विच उत्पन्न करांगा उसका नाम होएगा खालसा ए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वाक कीता ए जिहड़ा नाराज छंद जिहड़ा लिखिया होया आप जी दे पास गरीब नवाज साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ए अकाल पुरख दे सामने एक मैं प्रोमिस कीता है ओह मैं पूरा कर रहा ते खालसा बना रहा खालसा संपूर्ण होके पत्थरां दी पूजा नहीं करेगा जटा जड़ी है सिर ते नहीं बनाएगा किसे अकाल पुरख महाराज नूं छड़ के किसे होर दी पूजा विच नहीं रुझेगा ए मेरे खालसे दे प्रति मेरी एक बिनय है जिवें मैं अपने अकाल पुरख दे चरणां च एक बिनय कीती सी लिख दें